0: पाठ कीर्त की गुरु रामदास रखो शरण आई जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत आप सब संगत भागे हो जो सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर मिल बैठ के इलाही बाणी सरवण करके अपने जीवन दी कड़ियां नूं सफला बना रहे हो सतगुरां दा पावन फरमान सतगुर नूं सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन भागां दर्शन ना थी है भागहीन बहरोए सतगुरां दा असां जीवां ते तरस है रहमत है जो सत्संग दीआं कड़ियां सतगुरां ने बख्शिश कीतीआं हन सतगुर कृपा करन सभना दीआं हाजरीआं दर प्रवान करन दरों करों गुरसिखी जीवन दी दात गुरु चरणां नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन सो दास दे जथे दी इस टूर की अखीरली हाजरी सी सतगुरु कृपा करन एकाग्रता बनावे आप सब संगतां दीआं अरदासां बेनतीआं जोड़नीआं जो सतगुरां ने अपने गोद दे विच बैठ के हर दस कीर्तन का सुभाग सानू सतगुरां ने बख्शिश किया है सतगुरु कृपा करन गुरु साहिब नूं पाउंदा होया ते फिर आप सब संगतां दे दर्शन करांगे दासरियां दी फतेह प्रवान करने जी बुलाऊ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह दसां पातशाहियां दी जगदी जोत समर्थ गुरु जी आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरां दी पावन पवित्र बारगाह विच गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सरबत्र माई भाई गुरसिख बहुत वड्डियां भागां वाले हो गुरु की बख्शिश द्वारे गुरु संगत विच सज करके सतगुरु जी दी अमृत बाणी सरवण करके बख्शे होए जिंदगी दे सवासां फलां नूं गुरु सवारी संगत जी शब्द द्वारे सफल बनाउण दा सफल जतन कीता है। वाहिगुरु निरंकार जी ने अपने दास सरूप धारण करके वाहिगुरु निरंकार जी ने अपने दास सरूप धारण करके

शुभ के जड़ने स्वत जो निपजाए, इन तीन बिना क्रिम के स्वत के हित जो बन नाहे अकाज गवाए। भावर सिमर दे करता जी दे बचने।

0: मन मन हो जाए निहाल आन के, देख लो एक कड़ी दा आनंद मान के।
1: मन मन हो जाए निहाल आन के, देख लो एक कड़ी दा आनंद मान के।
0: मन मन हो जाए

वही गुरु वाली के कुल आलम साहिबे सहाबा हजूरे अनवर रहमतां दे सागर बख्शां दे भंडार कमाल करीम वालिए कुल आलम साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन पवित्र दरबार अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जी आओ अपनियां रसनावां नूं पवित्र करिए मन नूं चढ़दियां कला विच लिया के गज वज के फतेह बुलाइए आखिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। अज वीकेंड ते छुट्टी वाले दिन तुसी शहनशाह दे चरणां दे विच आए हो जी आयां नूं गुरु महाराज कृपा करन सब दी हाजरी अपने चरणां च प्रवान करके अपने दरों करो गुरसिखी जीवन रहमतां दे नाल साडियां झोलियां भर दे। हर बंदा गुरु घरों कुछ ना कुछ लैण वास्ते आउंदा है। आपां सारे कुछ ना कुछ लैण वास्ते ही आए हैं जी। ये साडा दाता है दत्ता दाता एक है सब को देवनहार और सतगुरां ने यह बख्शिश भी कर दिती कि गुरु क्या सिक्का तू जो भी मंगना है दुनिया के द्वारियां दे उत्ते ना जाई किसी भेखी के डेरे दे उत्ते ना जाई जो मंग है ठाकुर अपने ते बस है ठाकुर दे कोलों मंगना है साडा दाता है। हुण गुरु प्यारियो जिथे आपां इन्ना कुछ मंगण वास्ते आउने आ ते सतगुरु साडे उत्ते बख्शिश करदे आए कि इत्थे सानू सोझी भी मिलती है ते अकल भी मिलती है। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी आपां गुरु के द्वारे दे उत्तों इस मालक दे घर दे विचों कोई सोझी लैण वास्ते आउणा सोझी की है कि दाता जी तुसी मेरे अंदर सच दा ज्ञान प्रगट कर दिओ सानू मैनू सच दा पता लग जावे। हजे तक मैनू इह चीज़ दा पता ही नहीं कि सच की है ते झूठ की है। अजे तक मैं फानी संसार नू इही सच समझदा बैठा पर सतगुर से कहिंदे नहीं इह झूठा है जग रचना सब झूठ है इह झूठ है। हुण अपने परिवारां दे विच रह के बच्चियां दे विच रह के अपने दसां नौहां दी किरत कमाई करके उस सच्चे अकाल पुरख वाहे गुरु तक आपां नूं मिलण दा इह सुभाग प्राप्त होया। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलण की ए तेरी बरिया। तू 84

0: वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोट महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चो गिरद हमारे। राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहा। नानक प्रभ अविनासी ताकि सेवन बिरती जासी। आनंद करह तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा। बिलावल महला पंजेवा। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरण आई। च्यों गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई। राम नाम आओ खुद दिया एक काले बलाई रहा। राख लिए तें रखण हर सब व्याध मिटाई। कौ नानक किरपा पही प्रभै सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू न छुट है निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजेवा। मन मह चित बो चित बनी उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहरो हर देहु नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीर्त आखिए करते का होए बीचारो। तितकर गाव हो सोहिला सेवर हो सिजनहारो। तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला। ओम वारी चित

कथना कथि न आवे तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। देदा दे लैदे थाक पाहे, जुगा जुगंतर खाहि खाहे। हुक्मे हुक्म चलाए राहु, नानक विगसै वे परवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार। आखह मंगह देह देह, दात करे दातार। फेर के अगै रखिया, जित दिसै दरबार। मुहाओ के बोलन बोलिया, जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा, नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिया, सब आपे सचियार। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहिया समाई। गुर ईसर गुर गोरख, बर्मा गुर पार्वती माई। जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई, तीरथ नावा जे तिस भावा। विन भाने के नाए करी, जेते सिरठ उपाई वेखा। विन करमा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर। मानिक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानी आए, नाल चलै सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै, जस कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवई, ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई ना सुजई, जे तिस गुण कोय करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश। सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहे ना सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद, सुनिया मुख सालाहन मंद। सुनिया जोग जुगत तन भेद, सुनिया सासत सिमरित वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया अठ सठ का इसनान। सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिया लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सरा गुना के गाह, सुनिया सेख पीर पात साह। सुनिया अंधे पावह राह, सुनिया हाथ होवै असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कहे पिछै पछुताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ना सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ना सगल भवन की सुध। मन्ना मोहे चोटा ना खाए, मन्ना जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ना मार्ग ठाक ना पाए, मन्ना पत से प्रगट जाए। मन्ना मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावह मोख द्वार,
मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवहै न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावहै दरगह मान, पंचे सोह।

एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर।

नदरी पाईआय कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मान सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुट्टै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै नीसान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड का खोह कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेस केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबाल सूर तिन मह राम रहया भारपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार भाओ खला अगन तप ताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन काओ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फत है जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग।
नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुभन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबन्दे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शांत त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निरलंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथ निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते
नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृसं नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा होए फैलो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुनह जाहे सर्वमान सर्वतरमान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व बिसव रच्यो सोयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख
परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवहि बहु चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अभंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण परनाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भर नाडय अन दंड बाडय चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर परती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानियाए चत्तर चक्कर दानियाए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना कर ना परमंग ना पितरै ना कर्मंग ना काए अजन्मंग अजाए ना चित्तरै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसय अदिसय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते के आ छिज देसय के आ भिज भेसय के आ गंज करमय के आ भंज भरमय के आ भिज लोकय के आ दित सोकय के अवधूत वरणय के विभूत करणय के राजं प्रभाहय के धर्मं तुजाहय के आशोक वरणय के सर्वा अपरणय के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपय के अनुभव अनुपय के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्तरं बेहिनय के एकय अधीनय के रोजी रजाकय रहीमय रिहाकय के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वतर मान्याय के सर्वतर दान्याय के सर्वतर गावनाय के सर्वतर पावनाय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर साजाय के सर्वतर दीनाय के सर्वतर लीनाय के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भानय के सर्वतर मानय के सर्वतर इंद्रय के सर्वतर चंद्रय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजूहय के हुसनुल वजूहय तमामुल रुजूहय हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजुअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं
समस्तो पराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबंग सर्व भागे सुसर्वा अनुराग त्रिपुगत स्वरूप हैं अचेज हैं अछूत हैं किनरकंग परनास हैं पृथ्वील प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अपगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतरै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वै प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज कर हिंद हैं करीम उल कमाल हैं के हुसन उल जमाल हैं गनीम उल खिराज हैं गरीब उल निवाज हैं हरीफ उल सिकन हैं हिरास उल फिकन हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं बेहेस्तुल निवास हैं के सरबुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परंग परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुर्रत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मद भार छंद त्वै प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओअंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज ना बात अन झंज गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म
अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के धरण है जग के कारण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग भर है सर्वंकार है सर्ब पास्या है सर्वनास्या है करुणाकर है विश्वंग भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणाकार है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खाल कायक है बेस्वंग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार है हरता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छांद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सोतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिदान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहो मत को उना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर सांग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन
अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसिख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखा है पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रास हैं पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नाथ फिरे लिये सात समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सेखे सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करियै सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सेखे हमारे तारिय है चुन चुन सत्तर हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा
जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ ता का मूड उचारत भेदा जा को भेवना पावत बेदा ता को कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुवै बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संगरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रान काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो ताके ताप तनक मह हारि हो रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सतरह सहस पुनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जाबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो
राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरित शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी लिवै बज हो क्या करे विचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया ए सुनाओ होर थाव नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या कर है विचारिया एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा भावै कह नानक जिस देह प्यारे सोई जान पावै आवहो संत प्यारे हो अकथ की कर है कहानी कर है कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्या पाईऐ हुकम मन्हु गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संत हो कथे हो अकथ कहानी
हे मन चंचला चतुराई किनै ना पाया, चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले, साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ, सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले। कहै नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान। हे जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखान, ए आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया। कहै नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका सत गुरु भला पाया। कहै नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता हकेरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी, कहै नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हे तिवै चलहै जिन्ना मार्ग पाव, हे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव। हे जिसनु कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारै सुख पाव। हे कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव। हे एहो सोहिला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला, सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया। जिन तुर हो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गल्ली किनै ना पाया। कहै नानक सबद सोहिला सत गुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया पवित, माता पिता कुटंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै बिन सहजै सहसा ना जाय। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो वहो सबद लाग हो हर स्यो रह हो चित लाए। कहै नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए। जियाहो मैले बाहरहु निर्मल, बाहरहु निर्मल जियाहो ता मैले। तिनी जन्म जुवै हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहु विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहै नाही। फिर है ज्यो बेता लिया, कहै नानक
जिन सच तजया कूड़े लागे तिने जन्म जुवै हारिया। जी आहो निर्मल बाहर हो निर्मल बाहर हो ता निर्मल। जी आहो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी। कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा सच समानी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल। सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै। होवै ता सनमुख सिख कोई जी आहो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले। आप छाड़ सदा रह परना गुर बिन अवर ना जाने कोए कह नानक सुनहु संतहु। सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै। बिन सत गुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई। पुछो हो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै। बिन सत गुर मुक्त ना पाए बिन सत गुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखा हो बिन सत गुर मुक्त ना पाए। आव हो सिख सत गुरु के प्यार हो। गाव हो सच्ची बाणी बाणी ता गाव हो गुरु केरी। बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी। पीव हो अमृत सदा रह हो हर रंग। जपिहो सारिग पाणी कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सत गुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पैरवाणी। कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे। जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है। हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सिवलिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे। तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी। गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन वेहानी। गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया। बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए। जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैन वेहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारिय। मनहु क्यों विसारिय एवड दाता। जे अगन मह आहार पहुचावे ओस नो केहो पोहे ना सकी। जिस नो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभालिया कह नानक एवड दाता। सो क्यों मनहु विसारिय। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया।
कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपिया विचहो आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन।

ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए हूरत कितै, जिचर हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पलै पिया हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कहै नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत देखाया। गुर प्रसादी बुझया, ता चलत होआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापय। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलया, करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए, कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचया, सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नित रहो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवर ना देखो हो कोई, हर बिन अवर ना देखो हो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कहे नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुन नैनो पठाए। साचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनहो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया, हुआ रसना रस समाणी। सच अलख विडानी, ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनहो, पवित्र हो वहो। साचै सुन नैनो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै। वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया,

सच्चा कर गावहे। आनंद सुनहो बड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वेसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत।

ये अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आपार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की।

बोलना जान माया मद माता मरना चीतना आवे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोलना जाने माया मद माता मरना चीतना आवे मेरे राम राय

सत्संग जी अंतर्गत होके आपने दो तीन मिनट वास्ते नाम नु सुनना करना जीओ नाव चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन है उथे सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उथे सुन सकते हो किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जीओ जिन्हां गुरमुखां नाम नहीं सुनदा सास ग्रास अंतरगत समन विच ध्यान रखना जीओ श्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना श्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना विचारां तो रहत होके आपने मन विरतियां कागर चित करके ध्यान लाउणा जीओ विचार मारे तरे तारे उल्ट

0: सवारी संगत जी जिन्ना तुसी प्रेम विच भिज के वाहिगुरु जी का जाप जपया है, इहदे तो अनुमान अनुभव लाया जा सकता है भी तुहाडा कलगियां वाले पातशाह जी नाल प्यार है। तुहाडी सुरत सचखंड हजूर साहब दे दीदार करना चाहुंदी है। मैं देखिया जिन्हां दा चित नहीं सी करदा बोलण नूं उन्हां दे अंदरों भी आवाज आई, जिन्हां दी आवाज एक दूजे नाल मेल नहीं सी खांदी उन्होंने जतन किया भी असी भी वाहेगुरु बोलीए भी रस्ते नाल जांदे राही नाल मिलके कलगिया वाले पातशाह दे घर चले जाइए। आखो सतनाम श्री, इहदा मतलब है तुसी सारे वड्डिया भागां वाले हो, सतगुरु जी दे दरबार दी हाजरी बहुत प्यार विच आप जी ने भरी है। कलगिया वाला बापू कृपा करे साडे सारिया दी हाजरियां दर ते प्रवान करन, सानू सारियां नू नाम दी दात गुरसिखी जीवन दी दात बख्शन, अंदर सहज अंदर वैराग यही गुरु दे चरणा च अरदास है। तीने ताप निवार नहारा दुख हंता सुख रास, तां को बिगन न को लागे जां की प्रभ आगे अरदास, सुख दाता पै भजनो तिस आगे कर अरदास, मेर करे जे मेहरवान तां कार जे आवै रास, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले, हाथ दे राख अपने को सास सास प्रत पाले, प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत मन बिलास भये साहिब के, अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। प्यार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आप संगतां नूं लड़ीवार भाई गुरदास जी दे कवित सवाइयां विचों कथा सरवण करा रहे सन ज्ञानी भाई गुरमेल सिंह जी टरंटो वाले। हुण समां ढाडी वारां दा, भाई बलबीर सिंह जी बिहारीपुर वालियां दे जत्थे पासों ढाडी वारां सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु जी वाहिगुरु।

कब्यो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे

तेते अवगुण हमारे, दया करहो किश मेहर उपावहो, डुब दे पत्थर तारे, कृपा करहो दीन के दाते,

मानस की गत एही सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठे रंग गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बहुड़ न होवी भंग हर नामा हर रंग है हर रंग मंजीठे रंग गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बहुड़ न होवी भंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर तुठे हर उपदेसिया हर भेटिया राओ निसंग रहाओ मुंद एयाणी मन मुखी फिर आवण जाना अंग हर प्रभ चित न आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल भरे दोहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सरन